0: हम लोगों को जो सबसे बड़ा विषय थे हमारे प्रेस डिवीजन नंबर इन द पार्लियामेंट हाउस दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल स्पीकर एंड ईच वन ऑफ अस हैव बीन इंटीमेटेड सेपरेटली दैट व्हाट वाज आवर प्रीवियस डिवीजन नंबर एंड व्हाट इज नाउ द न्यू नंबर अलॉटेड टू अस तो ऑल क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिकॉग्निशन बाय द स्पीकर इवन व्हिच रिफ्लेक्टेड जो आज सुबह सर्वदलीय बैठक में भी हुआ था सब विरोधी दल वॉकआउट कर दिया था हम लोगों को क्यों बुलाए तो आज के बाद ये प्रश्नकाल और नहीं उठ पाए
1: जी
0: क्योंकि स्पीकर स्वीकृति दे दिया डिवीजन नंबर दे दिया और हम लोग भी ये सिद्धांत किया कि हर विषय पर चर्चा में हम लोग भाग लेंगे एनडीए को साथ रहेंगे और बंगाल की उन्नयन और उसको साथ देश को उन्नयन पे जो जो तरीका से एनडीए को साथ देना चाहिए हम लोग डील खुल के
1: आप समर्थन करेंगे
2: The concern is that Islamic Organized Party has been called to this meeting. The party which has not been recognized by the speaker, whose name does not appear on the website, there is no scope for a separate block. Why have they been invited by
1: the party? Aap abhi matter pe ja rahe
3: hain? It's a matter of integrity of the opposition that when a petition, when a representations are pending with the speaker with regard to the split of a party, the rebel faction is invited for the meeting and we feel that it's a miscarriage of justice and when Trinamool Congress pointed out regarding the invitation extended to the rebel faction we all expressed our strong protest with regard to the complete utter disregard to the institution of political parties and opposition as a token of protest we all have walked out
4: Sir, Kakoli Ghosh clearly stating that the decision is still pending with the Lok Sabha Speaker. They are going to submit the papers specifically.
3: They are going to submit. Has the Speaker taken a decision about that? Speaker has adjudicated on other parties like Shinde, Shiv Sena, etc. Speaker is yet to take a decision on this TMC split. When the Speaker's decision is pending, it's grossly unfair on the part of the government to invite the rebel faction for the meeting.
4: Are you saying that this has never happened in the past?
3: Never ever happened in any country.
5: Is granted to them. Where is that term in the books of law? Yes. This schedule 10 doesn't say anything about that and therefore we too have protested against it and walked out of the
6: यहाँ पे आपने देखा कि महाराष्ट्र से बगावत करने वाले सांसदों को किस तरह से इनवाइट किया गया जबकि अभी तक स्पीकर ने उन्हें मान्यता ही नहीं दी है तो ये तो पूरे देश में हो रहा है कोलकाता में टीएमसी को तोड़ा गया और भी राज्यों में तोड़ा जा रहा है अगर इसका विरोध नहीं करेगी विपक्ष तो कानून को बिल्कुल साइड करके कुछ भी आप मनमानी नहीं कर सकते हैं ये लोकतंत्र है लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है इससे लग रहा है कि लोकतंत्र की बजाय अब एकतंत्र आने वाला है इसी का हम विरोध करते हैं क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बिना कानूनी ये के बुलाना किसी भी तरह से मान्य नहीं
4: है को तो लेकिन पत्र पहले से ही दे दिया गया था पिटीशन जो सबमिट करी थी दोनों तरफ से वो उनके हाथों में
6: है लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है ना
4: तो कहना है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप को बुला सकते हैं उनका
6: ये तो अब अपोजिशन को बताएं ये बात लिखकर अपोजिशन को जो लग रहा है उन्होंने किया है अगर उनके तरफ से कोई सफाई है तो वो सफाई भी दे
7: The Delhi High Court has refused the plea to transfer Sonam Wangchuk to a private hospital. Wangchuk will remain at the government-run Safdarjung Hospital for medical treatment. The court ruled that the government's shift was not an arbitrary action. Judges stated that the government was well within its rights since Wangchuk did not self-admit. Wangchuk's family questioned why no health tests were conducted at the protest site. The family has been granted unlimited access to meet him. Team Wangchuk argued that government move may allow forceful treatment against his will. Lawyers claim that Wangchuk has no access to his own doctors or the legal counsel.
8: तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं हो रही थी अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी वो पोटेशियम 4.3 था बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे दैट्स नंबर वन नंबर टू, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे। तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुड़ जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे।
9: We had come with very high hopes to the High Court, because the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा। और हमारा ये कहना है, हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड। देर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट टू डिटेन मी, एंड देर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक इफ देर इज नो केस अगेंस्ट मी। सो टूडे हाईकोर्ट हैज हर्ड बोथ साइड्स, इट हैज पास्ड अ लॉन्ग ऑर्डर, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। हाईकोर्ट हैज आस्क देम टू ऑल्सो शेयर रिपोर्ट्स विथ हर। हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहां का एटमोस्फेयर बहुत खराब है, देर आर 30 पुलिसमैन स्टैंडिंग नियर और आउटसाइड हिज रूम, 100 पुलिसमैन स्टैंडिंग इन द ग्राउंड फ्लोर सम प्लेस, जैसा इन्होंने मुझे बताया। तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा?
10: हेल्थ अपडेट है श्री सोनम वांगचुक के बारे में। जैसे आप जानते हैं कल सुबह से हमारे साथ वे एडमिटेड है, कल के जैसे वे फुल्ली अलर्ट हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं, उनके वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सारे नॉर्मल हैं। बट उनके जो ब्लड पैरामीटर्स हैं, जैसे जो लैब पैरामीटर्स हैं, थोड़ा सा एबनॉर्मल है, बॉर्डर लाइन से नॉर्मल से थोड़ा कम है या ऊपर है। सो उसका हम जांच कर रहे हैं, लगातार हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पर क्योंकि वो कमज़ोर हैं और अभी भी उपवास पे हैं, तो उनको लगातार मॉनिटरिंग और जांचों की ज़रूरत हो रही है। इसलिए हमारी जो कंबाइंड टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की और हमारी, हम सब की सहमति यही है कि वे भर्ती रहे, क्योंकि उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ब्लड पैरामीटर्स अभी भी फुल्ली नॉर्मल नहीं है।
7: A political storm has erupted in Karnataka after Congress MLA H.C. Balakrishna controversial remark targeting Union Minister Shobha Karanjale. Speaking on the proposed Bidadi Township project, Balakrishna claimed that the project was initiated during former CM B.S. Yediyurappa tenure and took a personal swipe at Karanjale by referring to Yediyurappa as her yajman, a Kannada term commonly used to mean husband. The remark has triggered a sharp political backlash. The BJP has slammed the Congress MLA, calling the comment sexist, derogatory, insult to a woman. The party has demanded an unconditional apology from the Congress and strict action against Balakrishna, accusing the ruling party of resorting to personal attacks out of frustration over BJP protests against the Bidadi Township project.
11: ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೋಬಕವ್ರೆ, ನಿಮ್ ಪಾಪದ ಕೂಸಿದ ಒತ್ಪಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ನಮ್ ನಿಖಿಲ್ ನಡ್ಡ ಹೇಳ್ದ.
12: ವೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಡಿರೋಗೇಟಿವ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಆರ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೋಗೇಟಿವ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅಪೊಲಜೈಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್.
13: Of shamelessness, brazenness and misogyny by the Congress party in Karnataka. First, they carry out a project, the Bidadi project, in order to take away the farmers' lands, agricultural lands, at the cost of the environment, at the cost of the people, to benefit the real estate mafia. And when BJP protests, then they use the most sexist, misogynistic comments against Shobha Karandlaje. A Congress MLA says that this project was started by her yajman. This is the most unbecoming, shocking, disgusting comment to make at women in politics.
7: Torrential rain triggered a flash flood in J&K's Rajouri, causing widespread disruption. Dramatic visuals show powerful flood water sweeping away several vehicles as roads turned into fast-moving streams. One person has been killed in Jammu and Kashmir flash flood. Local authorities have urged residents to avoid flood-prone stretches and follow safety advisories. Officials continue to monitor the situation as water levels remain a concern following heavy rainfall. My colleague Pradeep Datta gets you these ground reports.
14: Pictures around me tell you the story of death, destruction and devastation caused by flash flood triggered by overnight torrential rain here in Rajouri and Poonch district. Here right now I'm in Rajouri town and you can see how the flash flood had inundated this area. Many of these vehicles are lying topsy-turvy. Some of them had turned turtle. Some of them are submerged inside debris. And loss of life is also reported from Rajouri town. One woman lost her life when nearby slum area was wiped out by gushing stream of water. It was at about 3:30 a.m. today morning when a river broke its bank and inundated low-lying area. After that, you can see what the gushing stream of water caused here. See, most of the vehicles are lying mangled, damaged, and can't be of any use to people. And here you can see the way the wheel of this vehicle is jammed. It can't move. The same way life here has come to standstill. Many of the houses are damaged. Some shops are damaged. And same is the story reported from Surankot, Bafliyas and other areas in border district of Poonch, where some people have lost their lives because of this flash flood. But despite so many problems, people here are trying to clean their shops. They are once again trying to start their life afresh. Let me show you the condition of this new bus stand. The new bus stand is completely lying in ruins. And also you can see many of the poles, electric poles, are completely uprooted because of the flash flood. The flow of river was so strong that it uprooted trees, it uprooted poles. And here, see the condition of the pole. It is completely uprooted and the bus stand is lying in ruins, and large number of police personnel, they are deployed here and they are blowing whistle again and again. There's a warning sign asking people not to come closer to a stream and the gushing stream of water that is flowing here nearby. A reason is obvious, because meteorological department has come out with weather advisory as per which the rainfall will continue till July 23rd. So there can be again flash flood like situation. That's one of the reasons that they do not want any kind of loss of life. And that's why they are preventing people from moving towards low-lying areas. They are preventing people from moving towards streams or riverbank. And let me show you. See, look at again. Let me show you from the top angle. Look at this. This bus stand, it will not be wrong if I say this bus stand has been converted into graveyard of vehicles. Mangled trucks, topsy-turvy cars, jeeps turned turtle, some of them completely submerged under debris. Almost every vehicle is damaged. More than 50 vehicles right now are completely damaged because of this flash flood. And let me show you, some of the vehicles were swept away. The current of river was so strong that it swept away many of these vehicles. It also swept away many of these boulders. 11 precious lives, including women and children, lost their lives because of flash flood triggered by incessant rainfall in twin border district of Poonch and Rajouri. Today morning, swollen Darhali River breached banks and inundated low-lying area. Many vehicles here in Rajouri town were swept away by the gushing stream of water. This is not the only vehicle that was damaged, but more than 100 vehicles were swept away and damaged because of this flash flood. But all you can right now see is boulders everywhere scattered, because these boulders were brought by the gushing stream of a river that inundated this area, that completely marooned this area. Now look at these vehicles. See how these vehicles are lying mangled here. Some of them topsy-turvy. They have turned turtle. And this shows that how strong was water current at the point of time when river inundated this area. And this was the bus stand. Now it looks like graveyard of vehicles. You can see vehicles of different type totally mangled here. Some of them turned upside down and some of them turned turtle. Now the question arises, when you look at these vehicles, many people must be thinking, how come this vehicle can fly and just be there? It was because of the fast flowing river that swept away these vehicles.
7: Slipping into a very short break, news and updates continue on the other side.

0: Space in the parliament during the monsoon session. That is a key demand of Sonam Wangchuk. He in fact has agreed that he will end his indefinite fast, which is today. This is the 20th day that he will end his fast, but provided that there are assurances given that this will be taken up in the parliament in the monsoon session that starts today. However, permission has been granted, like my colleague Tejshree was reporting. We will have Tejshree back with us. We seem to be having network and jammer issues in Jantar Mantar. This is the first day of the monsoon session that's going to start today. Sonam Wangchuk has listed out conditions to end his fast before his Chalo Sansad protest march. Sonam Wangchuk, the activist, said that he would end this fast if the government accepts responsibility for its recent failures in its education system, or if the MPs assured him that the issue would be raised in the parliament. Wangchuk issued the note as thousands of supporters there were, you know, wishes being out. People who have gathered at Jantar Mantar ahead of his Chalo Sansad protest march. Orders currently in force prohibiting gathering of five or more people, process sloganeering and protest. So there are no permissions that have been granted by the government as this protest march is concerned. This is going to be a people march. That is what, you know, the activists are saying. And they want to put their point forward. Let's just get you some of the political reactions coming about.
1: खुद की तरफ से बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हम ये मार्च करेंगे और दूसरी तरफ ये भी सतर्क रहें कि कोई भी जो निफेरियस एलिमेंट्स हैं जो इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं हम उनसे अलर्ट रहें और उसमें ना फंसने की कोशिश करें क्योंकि ये कोशिश की जाएगी कि इसको कहीं से भड़काया जाए या कुछ इसको ऐसा रंग दिया जाए अलर्ट रहें सतर्क रहें कि कोई इसको सबोटाज करने की ना कोशिश करे कोई गलत एलिमेंट्स इसमें घुस के इसको एक दूसरा कलर देने की ना कोशिश करे
2: ये क्लैरिफाई करना है कि कोई ऐसी एप्लीकेशन इस परमिशन रिलेटेड प्रपोज्ड मार्च रिलेटेड दिल्ली पुलिस को नहीं मिली है ना ही कोई भी परमिशन ऐसी दी गई है ये बताना जरूरी है कि पूरी नई दिल्ली जिले में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लागू है जिसके तहत पांच या पांच से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना कोई प्रोटेस्ट मार्च कोई प्रोसेशन और इस टाइप की चीजें यहां पे अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर वो भी परमिशन के साथ
3: आज जंतर मंतर पर देश का युवा बैठा है और ये युवा मांग कर रहा है देश के प्रधानमंत्री जी से कि आपकी सरकार के दौरान एक के बाद एक पेपर लीक होते चले जा रहे हैं इनमें से एक पेपर लीक हुआ नीट का पेपर जिसमें 22 लाख बच्चों को धक्का लगा उनको धोखा हुआ उनके साथ ये युवा मांग कर रहे हैं कि 22 लाख बच्चों को धोखा देने वाले और उसकी वजह से 17 बच्चों ने जिनका पता चला और भी ज्यादा कम से कम 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया सुसाइड करने पर मजबूर करने वाले लोगों के खिलाफ तो अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे चलने चाहिए लेकिन उनको मंत्री बना के बिठाया हुआ है पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं इसमें सपोर्ट करने के लिए ये मार्च बहुत बड़ा मार्च होना चाहिए
0: Stage is set. It's going to be a stage for a high voltage political action that's expected during this monsoon session as the NDA has strengthened its numbers, bringing the new parliamentary arithmetic into focus. Questions remain over whether the alliance can comfortably steer these key bills. The opposition, meanwhile, is expected to mount an aggressive attack. Ahead of the monsoon session, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to all parties to ensure smooth proceedings, saying that every member will get his opportunity, get his or her opportunity to speak. Now, also we have the Vande Mataram Protection Bill that's amongst the key legislations likely to be introduced, which proposes statutory protection for the national song.
4: और अगर पूर्व की तरह सरकार इन विषयों से भागेगी अयोध्या राम मंदिर के विषय से छात्रों के विषयों से एथेनॉल के विषयों से भागेगी नैतिक जिम्मेवारी लेने से अगर कतराएगी तो भारी नुकसान सरकार का होगा
5: आम जनता हमारी तरफ देख रही है कि हम उनकी आवाज बुलंद रखेंगे या नहीं जो लोगों के अवाम के आवाज सुनाने सोनम वांगचुक बैठा उनको तो गिरफ्तार कर दिए और जो चोरी किया पेपर लीक किया उस पे कोई असर नहीं राम मंदिर श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को बख्शे नहीं है सरकार और कोई है, आप और मैं गिनती में है भी नहीं
6: ऐसा है कि वंदे मातरम हमारे यहाँ का राजगान है।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: When others are warming up, I'm raring to

देश चल पड़ा है उसी का नतीजा है कि भारत के नौजवान इतना बड़ा साहस कर पाते हैं और सफल भी हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई। पिछले कुछ सप्ताह पहले एक सेमीकंडक्टर प्लांट यानी तीसरा देश को समर्पित किया गया। अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है, लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो एक लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। साथियों, हम भली भांति जानते हैं और पूरी दुनिया चिंतित भी है, लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। ये भारत के सामर्थ्य का परिचायक है। भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है, उसकी इसमें झलक है। और ऐसे में जब ये मानसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े। आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे, वे अपनी आवाज को बुलंद करे, देश को दिशा दे। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
6: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
7: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
8: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
9: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced action.
10: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
11: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.

0: This is the second time in as many years when the NEET paper has been leaked. Lakhs of students are affected. Their families are affected. There has to be some kind of, in whichever system you may talk of, there has to be accountability. Somebody must be answerable. It's not enough to say that, you know, okay, we held an exam and the leak didn't happen again. That's not enough. Okay, good. But why did it happen in the first place? Why were so many people affected? There has to be a debate. It's one thing to say that samvad hona chahiye, baatcheet honi chahiye. The parliament is all about debate. It's all about accountability. Hmm. There has to be a debate, and both sides, with great sensitivity, with seriousness, and in a calm manner, they need to debate this.
1: Well, that's a very valid suggestion, Nishant. You know, Javed sir is saying that let's debate this. You know, what probably is the best solution for this? Because, you know, if you look at numbers from 2002 to 2020-25, 45 papers, in fact, have been leaked. And many of them have also happened in Congress-ruled states. So there is clearly a exam mafia that's working. And probably this needs a solution that is driven by collective efforts.
2: There has been 95 paper leaks, and the NTA was formed by the government to make sure these re-examination and these leaks get stopped, but it has not stopped. See, we as a Congress party, we have 10 points that we will be highlighting. Starting number one, donation theft, which is a betrayal of faith. Paper leak and systematic destruction of the education system. Institutional capture.
3: Maryadaon, paramparaon ko palan karna, sabki zimmedari hai. Main yehi aapse apeksha karta hoon. मेरी सदन में हमेशा यह अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें मैं सबको उचित समय देता हूं सार्थक चर्चा हो संवाद हो तर्क हो इसके लिए संसद है आप तर्क से चर्चा करें नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है प्लीज प्रश्नकाल प्रश्न नंबर वन धवन लक्ष्मण भाई पटेल धवन लक्ष्मण भाई पटेल
4: प्रश्न नंबर एक मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के दोड़िया कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें एआई का उपयोग किया जा रहा है
5: माननीय अध्यक्ष महोदय विरासत हमें दिशा भी देता है विरासत हमें दर्शन भी देता है और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे मोदी जी ने पांच प्रण लेलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने दूसरा प्रण लेलवाते हुए गुलामी को मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी और तीसरा प्रण लेलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे हमारे मैनुस्क्रिप्ट हमारी विरासत है और आज मंदिर के रूप में शोक संस्थान के रूप में महाविद्यालयों में मठों में जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनुस्क्रिप्ट है ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए डिजिटलीकृत करने के लिए रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट

0: Okay, in news just coming in, we're being told that the Samajwadi MPs are on their way to Jantar Mantar. I have Aishwarya joining me live on the story. Aishwarya, what details can you share with us? How many MPs from the SP are on their way to Jantar Mantar to support the protest? All right, before you respond, my apologies. We're cutting live to the Lok Sabha where the session has resumed. Today is the first day of the monsoon session.
1: Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to Ministry of Parliamentary Affairs as mentioned against my name at serial number 3 as per today's revised list of the business. Thank you.
2: Item number 4, Sri Pankaj Chaudhary.
3: आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्दी कागजात आपके अनुमति से सदन से बदल के रखता
2: हूँ। आइटम नंबर 5 श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी।
4: सो विद योर परमिशन आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस द पेपर्स पर्टेनिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एज मेंशन अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 5 इन टुडेज लिस्ट ऑफ बिजनेस।
2: आइटम नंबर 6 श्री सुरेश गोपी जी।
5: मेघवाल जी को बुला दीजिए।
2: अर्जुन राम मेघवाल जी। आइटम नंबर 6।
1: थैंक यू चेयरपर्सन सर, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित

0: विक्रम संख्या 6 पर अंकित दस्तावेज जो श्री गोपी जी के नाम से अंकित है आपके अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। थैंक यू।
1: आइटम नंबर 7 श्री इतेला राजेंद्र जी।
2: थैंक यू चेयरमैन सर। सर आप देख तो नो दर्जी साहब जो रिकमेंडेड टू राज्यसभा
1: स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 8 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।
3: ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, आई विश टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस ए बिल further to amend the Supreme Court's number of judges act 1956.
1: Honorable Sadasya Dr. K. Kabya ji. Vidhayak ka prashna yeh hai ki ko purastapit karne ki anumati pradan ki jaye. Jo sadasya iske paksh mein wahan kahe, jo sadasya virodh mein wo na kahe. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पुनः स्थापित करें।
3: अदर पर्सन सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। थैंक यू।
1: आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।
3: ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, विथ योर काइंड परमिशन राइट ऑन द टेबल एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हिंदी वर्सन शोइंग रीजन फॉर इमीडिएट लेजिस्लेशन बाई प्रमोट सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 नंबर 1 ऑफ 2026। थैंक यू।
1: माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, कृपा कृपा करके आप सब बैठ जाइए। सदन का महत्वपूर्ण समय है, सभी विषय के ऊपर चर्चा होगा सदन में। आपका जो भी मुद्दे है इस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा होगा सदन में। ये व्यवहार ठीक नहीं है, ये व्यवहार ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष ने बार बार इसको रिपीट किया है, ऐसे नारेबाजी करने से सदन नहीं चलेगा जी। कृपा करके आप सब लोग अपना आसन पे बैठ जाइए। आपका सभी विषय के ऊपर सदन में चर्चा होगा, सदन में चर्चा होगा सभी विषय। कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए, कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। देश में कई सारे जगह पर, कई सारे प्रदेशों में बाढ़ का बड़ा समस्या है, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। बाढ़ का समस्या है, लोग भुगत रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। प्लीज कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए प्लीज। ऐसा नहीं है, आज पहला दिन है मानसून सेशन का, आज का दिन आप सब लोग सहयोग कीजिए प्लीज। आप सब लोग सहयोग कीजिए, पहला दिन है, देश के जनता को एक अच्छा मैसेज दीजिए। सदन सदन सहमति से चलता है, सदन आपको भी सुनेगा, सबका सुनेगा प्लीज। आप अपने आसन पर जाके विराज कर प्लीज प्लीज। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, ये रवैया ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये आपका जो व्यवहार है ये ठीक नहीं है। कृपा करके आप बैठ जाइए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
4: Saikia there in the speaker's chair, Dilip Saikia there in the speaker's chair, announcing that the Lok Sabha proceedings have been adjourned till 12:30. Aishwarya joining me live at this point. Aishwarya, very quickly a word on what's happening inside the

0: stopped over here because there have been multiple level of barricading that has been put at place, number one. And number two, police has been stating that no permission has been given to them for the protest. Definitely massive drama will be unfolding over here as in when the protesters start marching, because as of now, they haven't started marching from this very area from where we are reporting right now.
1: This paper leak and NEET examination ghotala and no chanda chori to hai hi hai, sab uske samarthak udhar baithe hain, lekin sir ye student ka mamla hai, ye student ka mamla hai jo lakhon bachchon ki jo bhavishya hai unke bhavishya ke bare mein main baat kar raha hu, aur uske liye aaj yahan jantar mantar pe हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है।
2: और जब बच्चे यहां आए हैं, छात्र नौजवान युवा जब यहां आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है, सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहां तक आना चाहे अपनी बात कहने तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं वो दे रहे हैं।
3: बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे देश की, जहां युवा अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार सुनना नहीं चाहती है, संवाद नहीं करना चाहती है। लगातार यही कहा गया है छात्रों द्वारा, यही कहा गया है सोनम वांगचुक द्वारा कि संवाद तो कायम करे सरकार, लेकिन सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये अपने आगे किसी की चलने नहीं देती।
4: आप लोग का क्या स्टैंड है मैम?
3: हम लोग, मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग छात्र के साथ हैं और हम अभी वॉक करेंगे जंतर मंतर।
5: यहाँ से जंतर वॉक करके जाएंगे आप लोग?
3: देखते हैं कितना बैरिकेटिंग लगा है, जो स्थिति देखने को मिल रही है जहाँ बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है। बताइए, देश के बच्चे लाठी खाएंगे, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, 90,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश। लेकिन
6: वॉज द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, आई डोंट नो इफ द three demands that Mr. Wangchuk has raised includes that demand, I haven't seen. However, our chhatron ki goonj has continued. The Dehradun event was a large event, over 10,000 students who had attended despite heavy rains, and Mr. Gandhi and the Congress party would like to continue to raise our demands and force this government, either in the parliament or on the streets of this country, to show sensitivity to the students of this country. You've seen the kind of confusion the re-NEET exam has also resulted in. And we have, as governments, no business playing with the future of our students.
7: NEET ke vishay ko lekar sarkar bahut svedanshil hai aur NEET ki pariksha ko lekar sarkar ne uchit kadam uthaye. कुछ लोग जो बीच के होते हैं वो ऐसी गड़बड़ करते हैं जिससे कि छात्रों को और सरकार को इस बात का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत के छात्र भारत के सरकार के लिए जो एक महत्व रखते हैं वो हम सब ने समय समय पर देखा है। देश की समस्याओं को समझना और उन पर काम करना, सरकार अपना काम कर रही है।
8: जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए, तो आप नहीं, आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है।
9: दी वे दी मोदी सरकार इज रिएक्टिंग टू दी डेमोन्स्ट्रेशंस एंड दी प्रोटेस्ट इज अनएक्सेप्टेबल एंड वी विल रेज दोस इश्यूज इन द पार्लियामेंट एंड वी आर वेरी क्लियर दैट दिस काइंड ऑफ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रोटेस्ट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड द वे फोर्सेज हैव बीन यूज्ड, पुलिस फोर्स हैज बीन मिसयूज्ड बाय मिस्टर अमित शाह to pressurize those protesters is unacceptable. The way the Delhi police behaved with Mr. Wangchuk on that his arrest and daily detention in the hospitals and not allowing his family to meet is also unacceptable.
10: Peaceful protest karne ka irada hai. अब हमारे साथ मुझे यकीन है कि हमारे साथ जो है ये लोग भी समझेंगे कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ इंसाफ मांगने आए।
11: The other big political development we're trying

0: companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
1: Be part of jury.
2: Welcome back. This is Breaking Ground. I'm Vedika Sood. A quick check on the headlines. At this point, a quick reminder, both Lok Sabha and Rajya Sabha have been adjourned again. The Lok Sabha resumes at about 2 p.m. this afternoon. The headlines at this hour, opposition corners government on NEET paper leak, raises deliver justice to students slogan, seeks debate on NEET paper leak. High drama at Jantar Mantar, protesters clash with security personnel, protesters breach barricade, security tightened. National conferences massive protest in Delhi demanding statehood for Jammu and Kashmir. The party chief Farooq Abdullah leads the stir. Party heads to Jantar Mantar despite no nod for protest. DMK MLA arrested over derogatory remarks against Tamil Nadu Chief Minister Vijay. Stalin trains guns on Vijay Sarkar, asks why so scared of criticism. Spain are champions of the world once again. La Roca have conquered the biggest stage, lifting the FIFA World Cup trophy after a stunning campaign. America launched a fresh wave of strikes on Iran, marking the ninth straight night of attacks. President Trump says the campaign is aimed at crippling Iran's nuclear ambitions, insisting Tehran will never be allowed to develop nuclear weapons. The monsoon session witnessed a stormy start as repeated sloganeering over the NEET paper leak issue disrupted the lower house of parliament and its proceedings, leading to the adjournments. Opposition MPs rushed to the well of the house, raising slogans of students ko nyay do, deliver justice to students, and demanding an immediate discussion on the paper leaks. Speaker Om Birla appealed for order, saying parliament cannot function amid disruptions. Remember, today is the first day of the monsoon session of parliament, and you've already seen disruptions and repeated disruptions in both houses of parliament. Outside parliament, Samajwadi Party MPs marched from parliament to Jantar Mantar in support of students. Dimple Yadav accused the government of ignoring the concerns of the youth and refusing to engage in dialogue with protesting students.
3: वांट की छात्रों की बात सुनी जाए क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है देश के लिए जहां किसान चाहे हमारा एनवायरमेंट हो चाहे हमारा युवा हो सभी परेशान हैं और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है कोई भी फोर्स जाने को तैयार नहीं है जहां बच्चे चाहते हैं कि फेयर फेयर एग्जामिनेशन तो हो कम से कम ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशन ना फेयर इलेक्शन के पक्ष में
4: नीट परीक्षा और जो विषय छात्रों के गूंज के नाम पे कुछ महीने से भी उठा रहे हैं तो इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए यही था हमारे रिक्वेस्ट लेकिन सरकार कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है देखिए पार्लियामेंट के अंदर अगर चर्चा चले तो सबके लिए अच्छा है चर्चा से इनका क्या डर है मुझे मालूम नहीं है
5: जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं श्रद्धांजलि तक नहीं इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार और जब बच्चे यहाँ आए हैं छात्र नौजवान युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती सुनना तो दूर अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं जो प्रताड़ना दे सकते हैं वो दे रहे हैं सरकार ऐसे ही है और सरकार के अगर पन्ने पलटे एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी एक साल का मेडिकल का कोर्स जीरो हो गया था सेशन जीरो हो गया था ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने हैं और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं
6: आई वॉन्ट टू टेल टू किरण रिजिजू जी दैट वी वॉन्ट द हाउस टू बी फंक्शनल इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर in a democratic process especially BJP in front of media either it is prime minister or home minister or the parliamentary affairs minister talks so fair what they do in the last sessions whatever their interest they want to implement in the house and run the house they doesn't

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
9: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
8: The show that sets the prime time agenda.
9: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
8: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आकर मसाला।
10: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
11: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I

0: और प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: Launch control, 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
8: This car makes no sense, yet it makes every sense.
9: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस तेल में।
6: Launch control, 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
8: This car makes no sense, yet it makes every sense.
9: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
8: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
9: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense. What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi. Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: The students. Dimple Yadav accused the government of ignoring the concerns of the youth and refusing to engage in dialogue with the protesting students.
1: जिसमें आज लाखों विद्यार्थी परेशान हैं और लाखों विद्यार्थी आज घर बार छोड़ के इतने तंग और तबाह हो गए हैं कि उनकी जिंदगी को जो बर्बाद किया उसके जिम्मेदार कौन है, तो मोदी सरकार है, मोदी जी हैं। तो अपने डिफेक्ट छुपाने के लिए, अपने कमजोरियां छुपाने के लिए किसी को कुछ करना, 56 इंच वालों का, 56 साल के युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन से ये कोई बोलने की बात है।
2: वांट की छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी परेशान हैं, और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है। जहाँ बच्चे चाहते हैं कि फेयर एग्जामिनेशन तो हो कम से कम, ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशन ना फेयर इलेक्शन के पक्ष में है।
3: नीट परीक्षा और जो विषय छात्रों के गूंज के नाम पे कांग्रेस कुछ महीने से भी उठा रहे हैं, तो इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, यही था हमारे रिक्वेस्ट। लेकिन सरकार कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर अगर चर्चा चले तो सबके लिए अच्छा है, चर्चा से इनका क्या डर है मुझे मालूम नहीं है।
4: जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं, और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसे ही है, और सरकार के अगर पन्ने पलटे, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, एक साल का मेडिकल का कोर्स जीरो हो गया था, सेशन जीरो हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने है। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं।
5: I don't know what the take of DMK is. You should ask them. They opposed the bill the last time. I hope they will oppose the bill this time too. See, please understand that while on paper it looks like everybody is getting an equal percentage of increase, in parliamentary democracy, absolute numbers matter. At the moment, Tamil Nadu and Pondicherry have 40 seats and Uttar Pradesh has 80 seats. So the delta between Tamil Nadu and Pondicherry and Uttar Pradesh is 40. But if you increase the seats by 50%, Tamil Nadu and Pondicherry will go up to 60 and Uttar Pradesh will go to 120. So the delta will become 60. The Raman issue is not only an emotive issue, it is a trust set up by the government. Even though it's a private trust, it performs like a public body. It must be open to all scrutinies of all public bodies. It involves public money, because devotees contributions are from the public at large. So it must be open to RTI, it must be open to CAG audit, it must also be open to debate in parliament about it, and there has to be accountability fixed to it.
6: You can see the pain of the family of this country on NEET and CBSE examination leakage. Basically, the parents are very much worried about the future of their students, their sons and daughters. Our minimum demand is to resign the education minister and have a discussion on NEET to CBSE exam. How to improve this exam system? How to improve this exam system? How to stop this leakage on examination? How to retain the credibility of the examination system? There should be a thorough discussion on that. There should be an action that.
0: And we have some breaking news coming in from Tamil Nadu. Chief Minister Vijay just held consultative meeting regarding Mekadatu and Kaveri water issue. Senior ministers and officials were also part of the meeting. Let's now tell you more about what this issue is. Tamil Nadu Chief Minister Vijay chaired this high-level meeting with legal and Kaveri water experts to perhaps strategize against Karnataka's proposed Mekadatu dam project. I want to go across to my colleague Vijay for more on this. Vijay, Chief Minister Vijay there reviewing the state's position on the Mekadatu dam project which Karnataka has proposed. Tell us more about this and what we can expect.
7: Sir, that's right. It's a very important meeting from Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay, as the Kaveri water from the Metu Dam should have been released from the on the second week of June month. But however, it has been delayed as the Karnataka government refused to release water to Tamil Nadu for the month of June and even July. That's what the Tamil Nadu government has been requesting the Karnataka government to release the required amount of water, the share, a due share to the Tamil Nadu. But however, Karnataka government says there has been a rain deficit in the Karnataka state itself, so they are unable to release the water. Meanwhile, opposition parties like DMK and ADMK have condemned the Karnataka government for this, and even DMK had decided to move to raise the issue in parliament also. Yesterday, we saw DMK MP spoke about the Meghadadu dam issue and other Kaveri related issue and the parliament also. Meanwhile, on the other hand, Chief Minister C. Joseph Vijay, along with senior ministers, held a consultative meeting with the officials. Even legal experts were part of the meeting regarding Meghadadu issue and Kaveri water related, Kaveri water issue also. So the meeting highlights the next step, what Tamil Nadu government are going to take a part of the discussion in this meeting, because remember, just a month, just a few weeks ago, Tamil Nadu Assembly also passed a resolution demanding union government to not to allow Meghadadu project to the Karnataka, from the Karnataka government. So in this situation only, the meeting has started by the Chief Minister Joseph Vijay.
0: Right, Vijay, thanks for sharing those insights here with us. In other news, the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026 is now all set to trigger a major political showdown in Parliament. Home Minister Amit Shah will introduce the legislation, which seeks to make insulting Vande Mataram a criminal offence, carrying a punishment of up to 3 years in jail. The government says that the move is aimed at protecting the dignity of the national song, but the opposition has now accused the BJP of pushing its ideological agenda. The Congress has said that this misuse of the office of Home Minister is completely unacceptable. The left too has opposed the legislation, saying that it will not support the bill in Parliament.
8: ये कौन सी सोच है कि वंदे मातरम को लेकर हम नहीं गाएंगे? जिस वंदे मातरम को लेके देश के क्रांतिकारी लोग शहीद हो गए, हमारे संसद में वंदे मातरम बजता है ना? अभी भी बजता है। तो ये सोच ठीक नहीं है। ये वही सोच है जो योग का विरोध करते थे और आज सब योग करते हैं, इसलिए सभी वंदे मातरम गाएंगे।
9: नहीं, देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है, राष्ट्रगान गाने के लिए बिल लाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का अपमान करना एक फैशन बन चुका था इतने साल तक। तो उसको यहाँ की जनता की समझ में आना चाहिए कि राष्ट्रगान का अपमान करने का किसी का अधिकार नहीं है। जो संसद में गाया जाता है, आज तो हर जगह हर स्कूल में गाने के लिए बाध्यतामूलक हुआ है, लेकिन उसकी सम्मान सर्वोपरि, और जो नहीं समझ पाएगा उसको समझाने के लिए कानून बनाया जा रहा है।
10: पहले आप सुन के देखो किस चीज की खुशबू आ रही है। आप लोग को नहीं आ रही है? मेरे आवाज मेरे कानों में जंतर मंतर से वंदे मातरम का गूंज उठ रही है। इन खिलाफ जिंदाबाद की आवाज मेरे कानों में आ रही है और हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है। तो बहुत अच्छी बात है, रास्ता दिख रही है, डेमोक्रेसी जिंदा है, दिल धड़क रहा है, देखेंगे अब क्या होगा।
11: The problem with RSS and all the Sanghis is the one thing that they wanted to pressurize people on believing on the idea of India. India is not created like that. India, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel and Netaji all worked for an India which is celebrated by every Indian. And this kind of pressurizing through law, through this kind of pressurizing other people, other all people to do one kind of thing is only followed in Shaka. It is not in Shaka they were not singing the national anthem for years, and they were not hoisting the national flag for more than 50 years of India's independence. 53 years after that only they hoisted the national flag. But this kind of misuse of the office of the Home Minister is unacceptable.
12: कौन करेगा इंसल्ट भाई देश में? कौन करेगा? कोई नहीं करता है। आप ये ला रहे हो इसके अंदर सारे, जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी रख लेते। बहुत खूबसूरत गीत है, हर जगह पढ़ा जाता था। क्या वो सिर्फ इसलिए आप निरख होगे कि वो उर्दू में
13: है? ऑल दीज आर डिस्ट्रैक्शंस। वी ऑल नो दिस गवर्नमेंट एंड दिस पार्टी बाय नाउ। वी ऑल नो द पॉलिटिकल stunts played by Mr. Modi and Mr. Amit Shah by now. They will always distract you. It's not a circus that you have to keep people entertained and busy. This is a serious business running a country. But they don't take it seriously. They'll keep us distracted. They'll keep us entertained. We are not getting distracted. We are not getting entertained.
14: They shouldn't enter into a situation whereby patriotism can be manufactured by such acts of criminalizing anything concerning Vande Bharat. And it was a settled case. Now they are opening up after 76 years. And also, Constituent Assembly had absolutely made it clear that only two stanzas of Vande Mataram needs to be taken. And it was not pegged along with the national anthem. Now they want to create politics of polarization. That's why they are bringing forth such bills.
0: With the monsoon session, attention has now shifted to whether the centre will bring the much-debated delimitation bill before Parliament. On being asked if the bill would be tabled during the session, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that any decisions would be taken only after discussions in the Business Advisory Committee. Rijiju also appealed to all political parties to perhaps work together for the nation's progress, urging constructive debate and cooperation during the session. Meanwhile, uncertainty continues over the opposition's stand on the proposed bill. NCP SP and the DMK have now indicated that they will decide their position only after the centre formally clarifies its stand on the delimitation bill.
15: ये तो आप DMK से पूछिए या इंडिया ब्लॉक से पूछिए। मुझे लगता है वो ठीक राह पे है। बाकी जो बिल्स हमारे पास होंगे वो उनको साथ देंगे। मुझे देखिए, डीलिमिटेशन की तो एक, मैं तो बाकी बिल्स की भी बात कर रही हूँ। डीलिमिटेशन तो एक बिल के अंदर आएगा और डीलिमिटेशन होना ही चाहिए। बहुत लॉन्ग ड्यू प्रोसेस है। और
11: बीजेपी पर्टिकुलरली मिस्टर अमित शाह मोदी वांटेड टू डू दिस डीलिमिटेशन, मिक्स द डीलिमिटेशन एंड द वुमेन्स बिल इन अ चॉकलेट कवर इज डेंजरस फॉर दिस कंट्री एंड वी फील दैट दोज पार्टीज विच हैज वोटेड ऑन 17th इफ दे चेंजेस देयर स्टैंड इन 100 डेज व्हाट made them to change is the main question. We hope that all the parties, whatever parties you mentioned, they will all will not forget that people are, if India is also watching, when we vote in parliament, people are going to watch who voted, who stood where, and who got under pressure from anybody. And we sincerely hope that those parties which has voted in 17th of April will stand with the same stand which they took it against delimitation.
16: आप लोगों से प्रार्थना है मेरी, लोगों को गुमराह न करिए। जहां तक वोमेन बिल का सवाल है, महिला बिल का सवाल है, वो ऑलरेडी 2023 में पास हो गया था। पौने तीन साल बाद इन्होंने नोटिफाई किया है 16 अप्रैल को। वो तो ऑलरेडी कानून बना हुआ है, 29 में लागू होना है। इसमें परसीमन की आवश्यकता ही नहीं है। ये बीजेपी का ही बनाया हुआ बिल था, कोई विपक्ष का बनाया हुआ बिल नहीं था। अब बीजेपी को लग रहा है कि और इसमें संशोधन करके हम सीटों को बिगाड़ देंगे, जैसे जम्मू कश्मीर में किया है, जैसा आसाम में किया है, तो हम विपक्ष वाले इसके विरोध में थे और रहेंगे।
17: वुमेन रिजर्वेशन डिलिमिटेशन चूंकि अभी एजेंडे में है नहीं, लेकिन हम स्पष्ट कर दें, वुमेन रिजर्वेशन पे कल भी हम साथ थे, आज भी साथ हैं, आने वाले दिनों में भी रहेंगे। पर वुमेन रिजर्वेशन के नाम पे, महिला आरक्षण के नाम से डिलिमिटेशन अगर किया गया तो इसका पुरजोर विरोध कल भी हमने किया था, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे।
18: ये सरकार का सरकार को तय करना है। यदि डिलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण बिल लाएंगे, हम अवश्य सपोर्ट करेंगे। पहले भी हमने सपोर्ट किया, आज भी हम सपोर्ट करना चाहते हैं।
19: सरकार का वही है ना, मेजोरिटी मिलना चाहिए ना सरकार के पास। मेजोरिटी के लिए तो आप सब देख रहे हो ना क्या क्या कर रही है सरकार। तो आएगा जब डिलिमिटेशन का बिल, तब वापिस पे देखते, चर्चा होती है, क्या उसका निकाल आता है वो बाद में बात करेंगे।
0: A workers of National Conference led by Farooq Abdullah gather at Jantar Mantar demanding statehood for Jammu and Kashmir. National Conference leaders are now staging this protest without permission from the Delhi police. While Chief Minister Omar Abdullah has been leading the campaign, party president Farooq Abdullah is leading the protest.

0: at Jantar Mantar in the national capital. Meanwhile, the Congress has now gone a step further, demanding statehood, plus calling not only for the restoration of statehood, but also constitutional guarantees for land and job rights.
1: हाँ जी
2: फिलहाल नहीं
3: यार तंजीम का माँग यही है इस वक्त तंजीम का माँग यही है
4: क्या आप लोग क्या कह रहे हो यार हमारा
5: ये जो हमारे उद्देश्य है हम फैसला करेंगे लीडर के इंशाल्लाह
4: तो लीडरशिप भी सस्पेंड किया कि आप
5: हाँ बस जा रहे हैं अब जा रहे
4: हैं कहाँ जाएंगे आप
5: अभी जो लीडरशिप का आदेश
4: परमिशन
5: नहीं दिया लेकिन हम तो अपना प्रोटेस्ट जारी करेंगे
6: वहाँ तक हमें छोड़ेंगे हम वहाँ तक जाएंगे हम मांग लेते आए कि जो हमारे से वादा किया गया पार्लियामेंट में हमें वो दिया जाए हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं हमें जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मांग की हमें वादा किया है हमें वो चाहिए अगर वो सच्चे पीएम है वो हमें देंगे अगर नहीं है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हमें अपनी मांग रखनी है हमें जो जायज मुतालबे अपने हैं हमें वो मांग
4: हम
6: तो चाहते हैं हम तो चाहते हैं कि जो हमारे एमपीज है वहाँ वो भी हमारी बात उठाए और जो बाकी जो हमारी लाइक माइंडेड पार्टीज है वो भी हमारी बात उठाए
7: हमारी तरफ से सवाल है वजीर आजम होम मिनिस्टर ने वादा किया है रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इलेक्शन हो गए ये लिमिटेशन हो गया अभी दो साल तक उनका वादा पूरा नहीं हो रहा
8: फारूक साहब क्या
7: उसी वादे के लिए हम लड़ रहे हैं
8: फारूक साहब क्या आने में थोड़ा देर तो नहीं हुई
7: कोई आने में देर नहीं हुई उन्होंने देर की हम तो इंतजार कर रहे हैं कि जो इलेक्शन हो जाएंगे ये दे देंगे मगर अभी तक नहीं दिए
9: शांति से प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाती जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है हम लोग जम्मू कश्मीर से 50-60 ज्यादा से ज्यादा 100 लोग इस उम्मीद के साथ के जंतर मंतर में बैठ के हम प्रदर्शन करेंगे और अपने हकूक मरकजी हुकूमत से मांगेंगे मरकजी हुकूमत को याद दिलाएंगे कि उन्होंने सदन के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये वादा किया था कि इलेक्शन के फौरन बाद रियासत का दर्जा वापस लौटा दिया जाएगा
0: On that note, we slip into a very short break. Come right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: वी आर ओवर जिमी।
5: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास सुबह।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आकर मसाला।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
11: Launch control, 0 to 100.

0: ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
1: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड ऑल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
2: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीज डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
3: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
4: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
8: Launch control, 0 to 100.
9: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
10: This car makes no sense, yet it makes every sense.
11: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
12: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
1: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
2: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीज डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
3: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
4: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: P-Mark, the mustard specialist since
6: 1933. सरसों से सरसों।
7: We are over, Jimmy.
8: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।
12: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
13: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? Silver के लिए Sterling Mark, Gold के लिए Hallmark
14: और Mustard Oil के लिए सिर्फ P Mark.
15: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933. बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
16: Launch control 0 to 100.
17: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
18: This car makes no sense, yet it makes every sense.
19: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
20: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
21: Our pure Shahi Paneer Masala.

0: principles.
1: That was Rahul Gandhi raising the pitch against the Prime Minister, and trust me, with his support behind, in fact, the protesters, tomorrow, when the second day of the monsoon session starts, it is going to be a hell of a session where the both sides are going to see a lot of sloganeering and, a lot of jibes at each other. This is exactly what happened on the first day of the monsoon session. It was a stormy start to the monsoon session as expected. Massive sloganeering by the opposition when they took up the neat paper leak issue and in the Lok Sabha. The proceedings had to be adjourned because the opposition members, the opposition MPs, wanted an immediate discussion on the neat paper leak issue. The opposition MPs rushed into the well of the House, raising slogans, students ko nyay do, and demanding immediate discussion on the NEET controversy. Speaker Om Birla had to adjourn the House. In fact, outside the parliament, Samajwadi Party MPs also put their weight behind the protesters. Their MPs, led by Dimple Yadav, marched from the parliament to Jantar Mantar to support the students. Dimple Yadav accused the government of ignoring the concerns of the youth and refusing to engage in dialogue with the protesting students. Remember, the government eventually, at around 12 o'clock, did have a conversation with the students. But before that, all this was happening inside the parliament, where the government was accused of being insensitive and not listening to the students.
2: जिसमें आज लाखों विद्यार्थी परेशान हैं और लाखों विद्यार्थी आज घर बार छोड़ के इतने तंग और तबाह हो गए हैं कि उनकी जिंदगी को जो बर्बाद किया उसके जिम्मेदार कौन है, तो मोदी सरकार है, मोदी जी हैं। तो अपने डिफेक्ट छुपाने के लिए, अपने कमजोरियां छुपाने के लिए किसी को कुछ करना, 56 इंच वालों का, 56 साल के युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन से ये कोई बोलने की बात है।
3: वांट की छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी परेशान हैं, और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी फॉर्म जाने को तैयार नहीं है। जहाँ बच्चे चाहते हैं कि फेयर एग्जामिनेशन तो हो कम से कम, ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशन ना फेयर इलेक्शन के पक्ष में
4: नीट परीक्षे और जो विषय छात्रों के गूंज के नाम पे कांग्रेस कुछ महीने से भी उठा रहे हैं, तो इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, यही था हमारे रिक्वेस्ट। लेकिन सरकार कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर अगर चर्चा चले तो सबके लिए अच्छा है, चर्चा से इनका क्या डर है मुझे मालूम नहीं है।
5: जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं, और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसी ही है, और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, एक साल का मेडिकल का कोर्स जीरो हो गया था, सेशन जीरो हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने है। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं।
6: Don't know what the take of DMK is. You should ask them. They opposed the bill the last time. I hope they will oppose the bill this time too. See, please understand that while on paper it looks like everybody is getting an equal percentage of increase, in parliamentary democracy absolute numbers matter. At the moment, Tamil Nadu and Pondicherry have 40 seats and Uttar Pradesh has 80 seats. So the delta between Tamil Nadu and Pondicherry and Uttar Pradesh is 40. But if you increase the seats by 50%, Tamil Nadu and Pondicherry will go up to 60 and Uttar Pradesh will go to 120. So the delta will become 60. The Ram Mandir issue. It's not only an emotive issue, it is a trust set up by the government. Even though it's a private trust, it performs like a public body. It must be open to all scrutinies of all public bodies. It involves public

0: कह दी मेरी राजा।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: Launch control, 0 to 100.
6: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
7: This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
9: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
7: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
8: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
9: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
10: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
11: Kuch to baat hai is dil mein.
12: Launch control, 0 to 100.
13: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
14: This car makes no sense, yet it makes every sense.
15: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
16: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
17: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
18: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
19: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
20: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीस डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
21: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
22: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now

0: front of the IOIC, that is the India Youth Congress office, and we'll be showing you the pictures as well, the manner in which the protest is taking place. We did report from the outside Krishi Bhavan, and apart from that, we did report just in front of Rail Bhavan and the press club as well, with the similar kind of pictures we saw. But here you can see the youth holding mobile in their hands, and they have turned on their flashlight of the phone in order to showcase their protest. Some of them are also sitting on dharna on ground. However, the RAF and the Delhi police is all deployed over here, and it seems like now, in just some time from now, tear gas shells will be fired so as to disperse this entire crowd. Now remains to understand that what happens next as far as this entire protest is concerned, because we have also seen that how this entire protest, the epicenter of the protest, which has been the Jantar Mantar since morning, several MPs are also participating in that protest. And in the visuals, in these visuals, you can see that how there is a massive sloganeering over here. Thousands of crowds have gathered, thousands of people have gathered over here, and the crowd is continuously swelling up. Remember that Sonam Wangchuk has also written a letter from the Safdarjung Hospital, where he has stated that he is perfectly fine and his medical vitals, medical parameters remains to be absolutely fine, and that he should be allowed now to come towards the Jantar Mantar, or for that matter should be allowed to participate in the protest, and also in fact the march that they are carrying out. Here also, please show the pictures as well of the security that's been deployed on my right and left hand side. Here actually, let me tell you that when you come from this end and keep on walking towards just 90 degree, you know, then you will be reaching towards the road which heads towards the parliament. That is the IYC office, as you can see.
1: एक महीने से दिल्ली का जंतर मंतर सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर यहां पर जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से संसद मार्च का ऐलान 20 जुलाई के रोज था, सीजेपी की तरफ से किया गया था, और जब यहाँ से मार्च निकला तो उसके बाद जो अफरा तफरी और जो गहमा गहमी वाली स्थिति है वो दिल्ली पुलिस, आरएएफ और जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच देखने को मिली। और इस दौरान जो जमकर झड़प की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने निकल कर आई हैं। लेकिन फिलहाल जो जंतर मंतर, जहां पर जिस जगह से ये प्रदर्शन पूरा चल रहा था, उस पूरे एरिया को खाली कराया जा रहा है। हम तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा देते हैं। जो यहाँ पर टेंट लगा हुआ था उसे हटाने की जो कवायद है उसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से जो हर तरफ यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं वो सिविल ड्रेस में भी नजर आएंगे, और इन सब के बीच में ये जो टेंट जिसके नीचे हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो यहाँ पर जुटे थे, जिनकी तरफ से लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और इसके साथ साथ तमाम जो दूसरी मांगे हैं वो की जा रही थी, जो बीते एक महीने से सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ था। इसी स्टेज के सहारे हमने देखा जो कई नेता यहाँ पर विपक्षी दल के जो पहुंचे उनकी तरफ से जो संबोधन है वो भी देखने को मिला। लेकिन फिलहाल अब इसे हटाने की जो कवायद है उसकी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर जो कुछ सामान है, जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर बीते एक महीने से डटे हुए थे, जमे हुए थे, वो भी यहाँ पर रखा हुआ आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। और जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः कुछ देर बाद ये जो स्टेज यहाँ पर बना हुआ था इसे भी हटाने की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। लेकिन जिस टेंट के नीचे ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर जुटे हुए थे, जमे हुए थे बीते एक महीने से, उसे यहाँ पर हटा दिया गया है।
2: Well, it's interesting to see that the government finally met with the protesters today. JP Nadda, Union Minister for Health, met with the protesters today. He met certain leaders of the protest today, and he has also assured them of action. But remember that this protest has been festering for some time now, 29 days to be exact, specific. In fact, Sonam Wangchuk has been fasting for the last 28 days. He is in the hospital, and now his health is also being monitored by a team of doctors. And what happened in Delhi is probably also a reason for not just the government to reflect on the kind of changes it needs to make, specifically with regard to the way educational institutions are governed in India, but also for the opposition as to what are the issues that are actually resonating with the people of this country. Let's now take a look at what kind of political reactions came in for this protest that took place in Delhi today.
3: जिसमें आज लाखों विद्यार्थी

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: प्री बरसों से सरसों
1: कुछ तो बात है इस दिल में
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात
3: वाओ मामा क्या स्वाद है
4: अरे मेरे राजा

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: देश का टायर जेके टायर।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा
10: सबका राजा आग और मसाला।
11: We are over जिमी।
12: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
13: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
14: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
15: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
16: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
17: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
18: दिस कार मेक्स नो सेंस येट इट मेक्स एवरी सेंस।
19: The Shiv Sena Shinde faction traitor seen assaulting a female doctor.
20: The 11-year-old kid was unfortunately lost his life due to this ghastly accident.
19: 18 maternal deaths, government hospitals across Rajasthan.
21: College for the last 10 years, the college doesn't even exist.
22: The High Court has cancelled the bail granted to Mathre.
23: I very much doubt that Ramesh Mathre is going to forget NDTV in a hurry.
24: Major embarrassment for the BMC administration. Its own general body has rejected that internal inquiry.
22: Several of these women came to these hospitals to deliver their babies. Some of them never even made it back home alive.
25: AIIMS Jodhpur also took to do an investigation on it.
26: The college exists only on paper.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
7: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम वीकडेज एट 4 PM।
8: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
9: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
10: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
11: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
12: This car makes no sense, yet it makes every sense.
13: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
14: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
15: The news, Ayush. Since when do we do scripts? Fair point. Picture this. The biggest stage. Floodlights.
16: Wow.
15: 4K. The works.
16: Where's the hook?
15: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
16: Where's the hook?
15: Think about this. Front page ad.

0: जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुबह 8 बजे से जो संसद मार्च के दौरान जो तस्वीरें निकल कर आईं, 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक अलग अलग राजधानी दिल्ली के जगहों पर जो हिंसक झड़प वाली जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आईं। लेकिन हैरानी की बात अभी फिलहाल ये है कि जंतर मंतर पर एक बार फिर से जो प्रदर्शनकारी बीते 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे वो फिर से जुट गए हैं, और ठीक उसी जगह पर जो स्टेज आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में नज़र आएगा वहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दीप के और उनके साथ साथ तमाम जो समर्थन में जो लोग हैं बीते 1 महीने से यहाँ पर जुटे हुए थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि आज जो सीजीपी के स्पोक पर्सन हैं और सीजीपी के जो पदाधिकारी हैं उनकी मुलाकात जेपी नड्डा के साथ भले ही हुई, आश्वासन मिला कि जो मांगे हैं उनकी उस पर जो काम है वो भी आगे होगा। लेकिन उस दौरान उसके बाद जो खासकर अगर सड़क पर बात करें तो जो झड़प है वैसी वाली स्थिति जो है वो भी देखने को मिली। लेकिन एक बार फिर से अब से कुछ देर पहले की बात करें तो केरला हाउस, यहाँ से आप 100 मीटर की दूरी पर देखेंगे तो वहाँ पर केरला हाउस है, और उस जगह पर शाम के तकरीबन 5:30 बजे के बाद के से लेकर 8:30 से 9 बजे तक यहीं पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैठे हुए थे, और उस दौरान सोनम वांगचुक की जो पत्नी है वो भी इन सभी के साथ बैठी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। वहीं अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जिस तरह से पूरे दिन सड़कों एक तरह से कोहराम वाली जो स्थिति है वो देखने को मिली, तमाम सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हुए हैं, कई प्रदर्शनकारी जो हैं उनको भी चोटें लगी हैं, तो कैसे ये सारी चीज़ें फैली इसको लेकर जांच करने में जुटी हुई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे मेरे ठीक पीछे बड़ी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो आपको यहाँ पर तैनात नजर आएंगे, बैरिकेड जो है वो भी लगे हुए हैं, आरएएफ की जो टुकड़ी है उसे भी तैनात किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद दोबारा एक बार फिर से बात करें तो यहाँ पर जो अभिजीत दीपके हैं और उसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर एक बार फिर से पहुँच गए हैं। देखने वाली बात हुई कि अगला कदम जो है सीजीपी का वो क्या होता है, किस दिशा में जाता है, और दिल्ली पुलिस की जो जांच आगे बढ़ती है तो उसमें क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं, कैसे ये सारी चीज़ें हुई, इसके पीछे कौन है, कौन किन कारणों से जो एक संसद मार्च का आह्वान भले ही किया गया था लेकिन जो मार्च है वो इतना हिंसक रूप में बढ़ गया। क्या सड़कों पर हमने देखा किस तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो भी तोड़ी गई, तमाम सारे दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो जनपथ रोड के इसके साथ साथ अशोका रोड जो है वो पूरा ब्लॉक नजर आया, जनपथ रोड पर तमाम गाड़ियों जो है उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर जब जांच आगे बढ़ेगी तो फिर क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ सीजीपी का अगला कदम क्या रहेगा ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से जो बातचीत की जो शुरुआत है वो हो चुकी है।
1: जी दिव्यांकर, बिकॉज देयर हैज बीन अ ह्यूज आउटरीच बाय द गवर्नमेंट एज वेल आफ्टर दे मेट द सीजीपी रिप्रेजेंटेटिव। थैंक्स वेरी मच दिव्यांकर फॉर गेटिंग अस द लेटेस्ट on this. Let's now tell you, if there was some kind of a conspiracy behind the Sansad Chalo protest that turned violent earlier today. Delhi police is investigating if the stir was genuine youth anger or perhaps mobilized mobs, because at this point of time there are several videos which have emerged that show policemen, including the DCP North, being injured as well, stone pelting by the protesters, CGP supporters on the police personnel, protesters also pelting stones, and there were various incidents where the police vehicles were also vandalized. Delhi police say 70 people have now been detained so far, and many of them are not students, so there is some kind of other elements which are also a part of this protest. Investigators are now probing whether there was a larger conspiracy behind the violence, including the possible role of misinformation and social media activity, with some posts allegedly traced to even some foreign-based handles. Police say more arrests are likely as those involved are identified through video footage, while multiple FIRs have also been registered. All right, let's now give you a glimpse of the ground report of day one of the Sansad Chalo stir by our reporters who've been on ground zero, showing you various sides of the protest today. Take a look.
2: Jantar Mantar, where the protest is underway by the CJP, and what we are given to understand is In just a short while from now, the march towards the parliament could begin. However, the police has made it very much clear that there is no permission given for the march. But these are the visuals that we are giving you from the very much protest site. There are sloganeerings, there are placards, there are posters, and they are demanding the resignation of Dharmendra Pradhan is what their stance is since day one is. Now let us one by one also talk about the developments that have been taking since morning, and you keep on showing you the pictures and also the security deployment. You can see on my right and left hand side there is a massive security deployment over here, and there is some kind of sloganeering over here. There was a small ruckus that took place some time back, and the police had to disperse the crowd by a lathi charge. And here if we keep on walking straight, then the situation remains to be the same.
3: मैं संसद भवन के बाहर हूँ, आप देख सकते हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु आपको दिखाएंगे किस तरह से इस एरिया को पूरी तरह से सिक्योर किया गया है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मियों जो है वो एक्चुअली जो है सीआरपीएफ के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग हैं। इस और इधर इधर देखिए, ये पूरा जो इलाका रोड जो है जो कि संसद भवन के लिए आने का एक रास्ता, आप इसको भी कह सकते हैं, ये साउथ गेट है और इसको भी किया गया है। और बीच बीच में आपको आवाज़ें भी सुनाई देगी जो कि शायद प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए की जा रही है। तो फिलहाल संसद भवन से यही रिपोर्ट है कि अभी इस इलाके को पूरी तरह से सिक्योर किया गया है।
4: Rajasena Road right now, where a lot of protesters have scaled walls of the parliament at this point, and at one point the protesters and the entire crowd gathered here also went unruly. The road that we are standing at currently, tear gas was also shelled at this particular road, and protesters have scaled walls. There's of course been clash with the security personnel. People here are present with posters as well in protest, and what we're also given to understand is that the Parliament Street police station, people have also reached outside the Parliament Street police station. Some people, including the police forces and the cops, were also injured in the protest.
2: Just near Jantar Mantar, and you can see the first layer of barricading that they are trying to break. The police is trying to control them. There is a massive ruckus over here on the other side as well. Police is trying to detain them now. And now in some time, the protesters will be, crossing the barricades, and they will be moving towards the parliament area. These are the pictures that we are giving you from this particular area. And you can see that how they have crossed this entire barricading and moving towards the parliament. These are the protesters, massive ruckus over here. You see, the police is trying to control them, but seems like it is difficult for a regular situation as well, because the crowd is thousands in numbers, and it seems very, very difficult for them to control the crowd as of now. You can see in the picture, the barricading has been crossed, and the people are trying to move, continuously swelling up as they are walking towards the another circle. But remember that there has been a massive police deployment, but police has also made it very much clear that no permission for the march has been given to these protesters, and there should be no gathering as well to this area. But seems like, the crowd as of now is very much uncontrollable, and that is why they have broken the first layer of barricading, and now they are moving towards the second layer of barricading. Police, there was a small argument and then a massive confrontation between the cops and the protesters here from the very place where we were reporting right now, and now they are moving straight towards the another layer of barricading. Well, another round of protest has begun here from where we are reporting right now, which is just in front of the IOIC, that is the India Youth Congress office, and we'll be showing you the pictures as well, the manner in which the protest is taking place. We did report from the outside Krishi Bhavan, and apart from that, we did report from just in front of Rail Bhavan and the press club as well, with the similar kind of pictures we saw. But here you can see the youth holding mobile in their hands, and they have turned on their flashlight of the phone in order to showcase yes, there are protests. Some of them are also sitting on dharna on ground. However, the RAF and the Delhi police is all deployed over here. And it seems like now, in just some time from now, tear gas shells will be fired so as to disperse this entire crowd. Now remains to understand that what happens next as far as this entire protest is concerned, because we have also seen that how this entire protest, the epicenter of the protest, which has been the Jantar Mantar since morning, several MPs are also participating in that protest. And in the visuals, in these visuals, you can see that how there is a massive sloganeering over here. Thousands of crowds have gathered, thousands of people have gathered over here, and the crowd is continuously swelling up. Remember that Sonam Wangchuk has also written a letter from the Safdarjung Hospital, where he has stated that he is perfectly fine and his medical vitals, medical parameters remains to be absolutely fine, and that he should be allowed now to come towards the Jantar Mantar, or for that matter should be allowed to participate in the protest, and also in fact the march that they are carrying out. Here also please show the pictures as well of the security that's been deployed on my right and left hand side. Here actually let me tell you that when you come from this end and keep on walking towards just 90 degree, you know, then you will be reaching towards the road which heads towards the parliament. That is the IYC office, as you can see.
1: All right, so earlier today, the CGP representatives met with Union Minister JP Nadda and they set multiple conditions, three top conditions. Let's now take you through them. Condition number one, resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. Apart from that, the second demand is release of Sonam Wangchuk, and third is rather give compensation. That's the third demand. Let's move to the third page. The third demand is release, give compensation, cash aid for families of students who died by suicide because of the NEET paper leak. These are some of the core demands that they have rather given out to the government, and with JP Nadda further urging them to end their sit-in. All right, let's now tell you about day one of monsoon session. The monsoon session today witnessed a stormy start as repeated sloganeering over the NEET paper leak issue disrupted Lok Sabha proceedings. That further led to adjournments. Opposition MPs rushed into the well of the house, raising slogans of students ko nyay do and also demanding an immediate discussion on the NEET row. Speaker Om Birla appealed for order, saying that Parliament cannot function amid disruptions. Outside Parliament, Samajwadi Party MPs marched from Parliament to Jantar Mantar in support of the students. Dimple Yadav, meanwhile, accused the government of ignoring the concerns of the youth and refusing to engage in dialogue with protesting students.
5: हमारे सांसद थाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है. ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते. सरकार है क्या? अहंकार है आपके अंदर. ये अहंकार बोल रहा है. अगर सरकार होती तो सुनती.
6: हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, और ये बच्चे कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे. इसलिए हम चाहते हैं कि इनका मकसद जो है उसकी तरफ हिंदुस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए.
7: नीट के विषय को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है और नीट की परीक्षा को लेकर सरकार ने उचित कदम उठाए. कुछ लोग जो बीच के होते हैं वो ऐसी गड़बड़ करते हैं जिससे कि छात्रों को और सरकार को इस बात का सामना करना पड़ता है. लेकिन भारत के छात्र भारत के सरकार के लिए जो एक महत्व रखते हैं वो हम सब ने समय समय पर देखा है.
8: जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है. अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए. तो आप नहीं, आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए. तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है.
9: जिसमें आज लाखों विद्यार्थी परेशान है और लाखों विद्यार्थी आज घर बार छोड़ के इतने तंग और तबाह हो गए हैं कि उनकी जिंदगी को जो बर्बाद किया उसके जिम्मेदार कौन है? तो मोदी सरकार है, मोदी जी हैं.
10: प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे.
11: कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल. Prime Minister Modi is the most anti youth prime minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing.

0: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
2: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में,
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful

0: भारत के सरकार के लिए जो एक महत्व रखते हैं वो हम सब ने समय समय पर देखा है।
1: जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए, तो आप नहीं, आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है।
2: जिसमें आज लाखों विद्यार्थी परेशान हैं और लाखों विद्यार्थी आज घर बार छोड़ के इतने तंग और तबाह हो गए हैं कि उनकी जिंदगी को जो बर्बाद किया उसके जिम्मेदार कौन है, तो मोदी सरकार है, मोदी जी हैं।
3: प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
4: कंट्री हैज अ मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मोस्ट एंटी youth prime minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they are doing, and it's disgusting what the government is doing.
5: And well, before the political showdown that began inside the parliament today, the Prime Minister made a strong appeal for constructive debate. Here are the snippets of his address before the monsoon session began today.
6: भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है, उसकी इसमें झलक है। और ऐसे में जब ये मानसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है।
5: With that, ladies and gentlemen, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and updates continue on the other side.
7: We are over, Jimmy.
8: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड, जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम वीकडेज एट 4 PM।
10: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
11: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
12: This car makes no sense, yet it makes every sense.
13: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
14: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."
15: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
16: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
17: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy Howard.
16: The show that sets the prime time agenda.
17: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
16: Join me, Aisha Sehgal, on.
5: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. And now in news that's

0: rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing.
1: And well before the political showdown that began inside the parliament today, the Prime Minister made a strong appeal for constructive debate. Here are the snippets of his address before the monsoon session began today.
2: भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है उसकी इसमें एक झलक है और ऐसे में जब ये मानसून सत्र आरंभ हो रहा है देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है दल उनका कोई भी हो लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है ऐसे समय में उनके अनुभव की उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है देश को भी जरूरत है और इसके लिए संसद का चलना सार्थक चर्चा होना मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है
1: With that, ladies and gentlemen, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and updates continue on the other side.
3: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
4: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's happening? How?
3: The show that sets the prime time agenda.
4: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
3: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
5: They led, they redefined the business conversation. Now, India Inc.'s finest take center stage. Who will win the NDTV Profit Business Leadership Awards? 26 July on the NDTV Network.

0: दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है।
1: With that, ladies and gentlemen, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and updates continue on the other side.

0: this entire protest is concerned, because we have also seen that how this entire protest, the epicenter of the protest, which has been the Jantar Mantar since morning, several MPs are also participating in that protest. And in the visuals, in these visuals, you can see that how there is a massive sloganeering over here. Thousands of crowds have gathered, thousands of people have gathered over here, and the crowd is continuously swelling up. Remember that Sonam Wangchuk has also written a letter from the Safdarjung Hospital, where he has stated that he is perfectly fine and his medical vitals, medical parameters remains to be absolutely fine, and that he should be allowed now to come towards the Jantar Mantar, or for that matter should be allowed to participate in the protest, and also in fact the march that they are carrying out. Here also please show the pictures as well of the security that's been deployed on my right and left hand side. Here actually let me tell you that when you come from this end and keep on walking towards just 90 degree, you know, then you will be reaching towards the road which heads towards the parliament. That is the IYC office, as you can see.
1: And well, what happened on the streets of Delhi today, the ripples of the same were seen in the parliament today, which has seen the day one of the monsoon session. The monsoon session today witnessed a stormy start as there were repeated sloganeering over the NEET paper leak issue that disrupted Lok Sabha proceedings and even Rajya Sabha as well, and it led to adjournments in both the houses. Now the opposition MPs rushed to the well of the house raising slogans of students ko nyay do and demanding an immediate discussion on the NEET row. Speaker Om Birla appealed for law and order. He said that the parliament cannot function amid disruptions. And outside the parliament, what we saw was there were several opposition MPs. One of them was also Samajwadi Party MPs who were marching from parliament to Jantar Mantar in support of the students. Dimple Yadav, who is Samajwadi Party MP, also wife of Akhilesh Yadav, accused the government of ignoring the concerns of the youth and refusing to engage in dialogue with protesting students. Some political reactions coming in on that story.
2: हमारे सांसद थाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या? अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती।
3: हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, और ये बच्चे कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इनका मकसद जो है उसकी तरफ हिंदुस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए।
4: नीट के विषय को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है और नीट की परीक्षा को लेकर सरकार ने उचित कदम उठाए। कुछ लोग जो बीच के होते हैं वो ऐसी गड़बड़ करते हैं जिससे कि छात्रों को और सरकार को इस बात का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत के छात्र भारत के सरकार के लिए जो एक महत्व रखते हैं वो हम सब ने समय समय पर देखा है।
5: जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप नहीं, आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है।
6: जिसमें आज लाखों विद्यार्थी परेशान हैं और लाखों विद्यार्थी आज घर बार छोड़ के इतने तंग और तबाह हो गए हैं कि उनकी जिंदगी को जो बर्बाद किया उसके जिम्मेदार कौन है? तो मोदी सरकार है, मोदी जी हैं।
7: प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनके उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
8: कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मोस्ट एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड। द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर डिमांडिंग देयर राइट्स। देयर राइट्स आर टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट रिस्पेक्ट्स देम, टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज फेयर, टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज वर्किंग। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन व्हाट दे आर डूइंग एंड इज डिसगस्टिंग व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग।
1: And well, before the political showdown that began inside the parliament today, the Prime Minister made a strong appeal for constructive debate. Here are the snippets of his address before the monsoon session began today.
9: भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है उसकी इसमें झलक है, और ऐसे में जब ये मानसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। सकारात्मक स्पिरिट राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, मिलजुल करके देश को आगे ले जाने के संकल्प लेना, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही समय की मांग है।
1: With that, ladies and gentlemen, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and updates continue on the other side.
10: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
11: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Harisha Sehgal.
10: The show that sets the prime time agenda.
11: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
10: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
12: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
13: Really?
12: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
14: The fact that there is now suddenly a raging debate with regard to ethanol, why is it that it's happening now?
15: E20, madam, has been around for nearly 2 years now. There are 20 crore two-wheelers using E20. There are 20 lakh four-wheelers using E20. But I think the counter information which has been put out, that this is not something we've done suddenly, that E20 has been around for at least almost 2 years, that E15 has been around for 3.5 years, and by the way, in the last 18 months or 24 months, there have been no complaints.
16: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
17: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
18: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
19: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
20: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now

0: And we have some breaking news on top of the show. The Delhi police have now detained around 70 people in connection with the violence that erupted during the protest earlier today, with officials claiming that many of those taken into custody are not students. According to police sources, multiple FIRs are now being registered and a comprehensive investigation is also underway to assess whether there was a larger conspiracy behind the clashes. Investigators are also probing on certain handles that allegedly amplified misinformation surrounding the protests. Police cited one viral claim falsely alleging that 7 protesters had been killed, which is not true, and that has now been fact-checked. That false claim also said that 391 injured and 250 arrested. All these claims are fact-checked by the Delhi police. They further described it as an attempt to spread rumors and misinformation and further inflame tensions around this. Sources added that if the involvement of any political party in instigating or fueling the violence is established during the investigation, appropriate legal action will be taken. This at a time when there have been multiple clashes also reported between the protesters, the CGP supporters and the police personnel earlier today, when thousands of not just students but also various other leaders, they were marching towards the parliament. I'm now being joined by Divyankar. Divyankar, police officials keh rahi hain ki 70 protesters abhi arrest ho chuke hain kyunki ye protest mein sirf students ya chhatr nahi the but bahut alag alag political elements bhi isme jure hue the.
1: जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुबह 8 बजे से जो संसद मार्च के दौरान जो तस्वीरें निकल कर आईं, 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक अलग अलग राजधानी दिल्ली के जगहों पर जो हिंसक झड़प वाली जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आईं, लेकिन हैरानी की बात अभी फ़िलहाल ये है कि जंतर मंतर पर एक बार फिर से जो प्रदर्शनकारी बीते 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे वो फिर से जुट गए हैं, और ठीक उसी जगह पर जो स्टेज आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में नज़र आएगा वहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दीप के और उनके साथ साथ तमाम जो समर्थन में जो लोग हैं बीते 1 महीने से यहाँ पर जुटे हुए थे. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था. हालांकि आज जो सीजीपी के स्पोक पर्सन हैं और सीजीपी के जो पदाधिकारी हैं उनकी मुलाकात जेपी नड्डा के साथ भले ही हुई, आश्वासन मिला कि जो मांगे हैं उनकी उस पर जो काम है वो भी आगे होगा, लेकिन उस दौरान उसके बाद जो खासकर अगर सड़क पर बात करें तो जो झड़प है वैसी वाली स्थिति जो है वो भी देखने को मिली. लेकिन एक बार फिर से अब से कुछ देर पहले की बात करें तो केरला हाउस, यहाँ से आप 100 मीटर की दूरी पर देखेंगे तो वहाँ पर केरला हाउस है, और उस जगह पर शाम के तकरीबन 5:30 बजे के बाद के से लेकर 8:30 से 9 बजे तक यहीं पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैठे हुए थे, और उस दौरान सोनम वांगचुक की जो पत्नी है वो भी इन सभी के साथ बैठी हुई थी. लेकिन एक बार फिर से जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं. वहीं अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जिस तरह से पूरे दिन सड़कों पर एक तरह से कोहराम वाली जो स्थिति है वो देखने को मिली, तमाम सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो भी

0: हुए हैं, कई प्रदर्शनकारी जो हैं उनको भी चोटें लगी हैं। तो कैसे ये सारी चीज़ें फैली, इसको लेकर जांच करने में जुटी हुई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे मेरे ठीक पीछे बड़ी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो आपको यहाँ पर तैनात नजर आएंगे। बैरिकेड जो है वो भी लगे हुए हैं, RAF की जो टुकड़ी है उसे भी तैनात किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद दोबारा एक बार फिर से बात करें तो यहाँ पर जो अभिजीत दीपके हैं और उसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर एक बार फिर से पहुँच गए हैं। देखने वाली बात हुई कि अगला कदम जो है CGP का वो क्या होता है, किस दिशा में जाता है और दिल्ली पुलिस की जो जांच आगे बढ़ती है तो उसमें क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं, कैसे ये सारी चीज़ें हुई, इसके पीछे कौन है, कौन किन कारणों से जो एक संसद मार्च का आह्वान भले ही किया गया था लेकिन जो मार्च है वो इतना हिंसक रूप में बढ़ गया। क्या सड़कों पर हमने देखा किस तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो भी तोड़ी गई, तमाम सारे दिल्ली पुलिस के जो गाड़ियाँ हैं वो जनपद रोड के, इसके साथ साथ अशोका रोड जो है वो पूरा ब्लॉक नज़र आया, जनपद रोड पर तमाम गाड़ियों जो है उनको भी नुकसान पहुँचाया गया। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर जब जांच आगे बढ़ेगी तो फिर क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ CGP का अगला कदम क्या रहेगा, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत की जो शुरुआत है वो हो चुकी है।
1: जी जी दिव्यांकर, बिकॉज देयर हैज बीन अ ह्यूज आउटरीच बाय द गवर्नमेंट एज वेल आफ्टर दे मेट द CGP रिप्रेजेंटेटिव। थैंक्स वेरी मच दिव्यांकर फॉर गेटिंग अस द लेटेस्ट ऑन दिस। लेट्स नाउ टेल यू इफ देयर वाज सम काइंड ऑफ अ कंस्पिरेसी बिहाइंड द संसद चलो प्रोटेस्ट दैट टर्न्ड वायलेंट अर्लियर टुडे। Delhi police is investigating if the stir was genuine youth anger or perhaps mobilized mobs, because at this point of time there are several videos which have emerged that show policemen including the DCP North being injured as well, stone pelting by the protesters, CGP supporters on the police personnel, protesters also pelting stones, and there were various incidents where the police vehicles were also vandalized. Delhi police say 70 people have now been detained so far and many of them are not students, so there is some kind of other elements which are also a part of this protest. Investigators are now probing whether there was a larger conspiracy behind the violence, including the possible role of misinformation and social media activity, with some posts allegedly traced to even some foreign-based handles. Police say more arrests are likely as those involved are identified through video footage, while multiple FIRs have also been registered. All right, let's now give you a glimpse of the ground report of day one of the Sansad Chalo stir by our reporters who've been on ground zero, showing you various sides of the protest today. Take a look.
2: Jantar Mantar, where the protest is underway by the CJP, and what we are given to understand is in just a short while from now the march towards the parliament could begin. However, the police has made it very much clear that there is no permission given for the march, but these are the visuals that we are giving you from the very much protest site. There are sloganerings, there are placards, there are posters, and they are demanding the resignation of Dharmendra Pradhan is what they have, their stance since day one is. Now let us one by one also talk about the developments that have been taking since morning, and you keep on showing you the pictures and also the security deployment. You can see on my right and left hand side there is a massive security deployment over here, and there is some kind of sloganeering over here. There was a small ruckus that took place some time back, and the police had to disperse the crowd by a lathi charge, and here if we keep on walking straight then the situation remains to be the same.
3: मैं संसद भवन के बाहर हूँ, आप देख सकते हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु आपको दिखाएंगे किस तरह से इस एरिया को पूरी तरह से सिक्योर किया गया है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मियों जो है वो एक्चुअली जो है CRPF के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग हैं इस और इधर देखिए ये पूरा जो इलाका है, रोड जो है जो कि संसद भवन के लिए आने का एक रास्ता आप इसको कह सकते हैं, ये साउथ गेट है और उसको भी किया गया है, और बीच बीच में आपको आवाज़ें भी सुनाई देगी जो कि शायद प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए की जा रही है। तो फिलहाल संसद भवन से यही रिपोर्ट है कि अभी इस इलाके को पूरी तरह से सिक्योर किया गया है।
4: फिर
2: Raisana Road right now, where a lot of protesters have scaled walls of the parliament at this point. And at one point, the protesters and the entire crowd gathered here also went unruly. The road that we are

0: further led to adjournments. Opposition MPs rushed into the well of the house, raising slogans of students ko nyay do and also demanding an immediate discussion on the NEET row. Speaker Om Birla appealed for order, saying that Parliament cannot function amid disruptions. Outside Parliament, Samajwadi Party MPs marched from Parliament to Jantar Mantar in support of the students. Dimple Yadav meanwhile accused the government of ignoring the concerns of the youth and refusing to engage in dialogue with protesting students.
1: हमारे सांसद थाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या? अहंकार है आपके अंदर। ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती।
2: हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है और ये बच्चे कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इनका मकसद जो है उसकी तरफ हिंदुस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए।
3: नीट के विषय को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है और नीट की परीक्षा को लेकर सरकार ने उचित कदम उठाए। कुछ लोग जो बीच के होते हैं वो ऐसी गड़बड़ करते हैं जिससे कि छात्रों को और सरकार को इस बात का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत के छात्र भारत के सरकार के लिए जो एक महत्व रखते हैं वो हम सब ने समय समय पर देखा है।
4: जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप नहीं, आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है।
5: जिसमें आज लाखों विद्यार्थी परेशान हैं और लाखों विद्यार्थी आज घर बार छोड़ के इतने तंग और तबाह हो गए हैं कि उनकी जिंदगी को जो बर्बाद किया उसके जिम्मेदार कौन है? तो मोदी सरकार है, मोदी जी हैं।
6: प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
7: कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing.